0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस जोविंटुरी नी लिली नी जोविंटुरी नी पापेल जोविंटुरी नी ना कंडीशन जोविंटुरी नी फुटुर नी हने सने बे तंबने मक हाँ ना इन जोविंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इड पॉइस हमने मिसाजन माका तंब जोविंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसे डारे नी हने सने आन हुसी तो तेवरिया बारा कीड़ा हुसी तेरा ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी उने मालुक सीरा तंबने मा खाउ दिहन से हाउ ही ना मुरारा हाउ दिहन हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी सोसेदारे तंबे इंटरेस से हुसी इतने हमु तुक ने इंटरेस से बस सोसेदारे ने मक इम्पोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे साई अजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुरा करते थे बस जोवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबा निहिरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी दारे हु रि कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबा निहिरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमातुरी दारे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मका साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदा ने मक इंपोर्टेंट लावेले दिहन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa Venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia ane hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk Juventus sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba Juventus sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk Juventus hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.